0: ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଧନବନ୍ତ, ବିଦ୍ୱାନ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ନିର୍ଭୀକ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से

0: शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी कटक प्रचार କରୁଛୁ ଭକ୍ତି ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ନିମାୟ ଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପୁରାତନ ରଚନାରୁ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ବଂଶୀ ବଦନ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଜ।

0: चेन्नई स्थित एमए चिदम्बरम क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलम सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक शुणु आज कार्यक्रम सूचना सकाल 7:10 कार्यक्रम आम स्वास्थ्य शुणिपारे स्वास्थ्यपाई मत जरूरी ए संपर्क कहे डाक्तर कौशिक मिश्र प्रभात परिक्रमा सकाल 7:25 ठिक कहतु ठिक लेखु रही बर्ण संयोजना कहे डॉ प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी सकाल 7:35 चिरसबुज सकाल 7:40 पल्लिकीत गई महाप्रसाद कर ओडिया आलबम गीत सकाल 8:30 वैदेश विलासर एकादश अध्याय सकाल 8:45 गीत गीतिका सकाल 9 नाटक इलिसिना दिन 10 रचना एवं प्रयोजना तरुणकांति राउत शास्त्रीय संगीत क्रम रुद्र वीणा बादन दिन 10:30 परिवेशन करिबे शिल्पी बाहाउद्दीन डगर अवलोकित दिन 11:10 शिल्पी मंजुश्री त्रिपाठी एवं सुमिता पंडा गोड़ानाच गीत दिन 11:30 परिवेशन करिबे उत्सव चरण दास और साथी मंजुल मध्यान्हरे श्रोता अनुरोध में हिंदी और ओडिया कथचित्र गीत दिन 12 स्वर निर्झर दिन 12:30 लोकप्रिय कंठशिल्पी धनंजय शतपथी संपर्क शुणिपारे सांतला गीत दिन 10 परिवेशन करिबे सीताराम टोटू और साथी दिन 20:20 नारी महल शुणिपारे संगीत रूपक उछुड़े बन उल्लास मन रचना जगन्नाथ पंडा संगीत प्रफुल्ल चंद्र बेहरा प्रयोजना सुमित्रा महापात्र आम आईन दिन 2:45 आलोचन विषय रही कल कारखाना काम कर महिला आईन आलोचक आईनजीवी संयुक्ता पात्र असरती अपराह हिंदी कथचित्र गीत अपराह 3:25 चिरहरित्री श्रोता एसएमएस जरिया ओडिया लघु संगीत और आलबम गीत अपराह 4 किशोर चक्र अपराह 5 पूर्णिमानाथ शुणिपारे भजन और पल्लीगीत मंदिरमालीन ओडिशा गोरखनाथ मंदिर विषय कहे सौभाग्यनी राय और तबलावादक अर्णव कर साक्षात्कार कैंपस विचित्रे रही केएमबीबी उच्च विद्यालय कटक गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानस पंचम भाग संध्या 6:10 झुमर गीत 6:30 परिवेशन करिबे कल्पना महंती ओडिया कथचित्र गीत राति 7:02 जाजपुर जिला हालचल राति 7:25 बनानी राति 7:30 पाउंश चाष उधार बजार भित्तिक चाहिदा ए संपर्क आलोचना करिबे प्रदीप्त कुमार महापात्र हिंदी कथचित्र गीत राति 8:02 पारिवारिक धारावाहिक पक्का कम्बल पोथचता यार अष्टम भाग राति 8:30 रचना बसंत कुमार विश्वाल प्रयोजना रमापद नंद अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका राति 9:30 और अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम राति 10 रिले कर प्रसार कर आकाशवाणी दिल्ली शुणिले आज कार्यक्रम सूचना आकाशवाणी कटक आम परवर्त कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे टिके परे।

0: समृद्धि आणंतु।
1: इफ्को नैनो सार चमत्कारिता रे प्रत्येक चाष एवं चाषी समृद्ध हेबे।
2: आरंभ करुछ कार्यक्रम चिर सबुज। आज एथिरे शुणन्तु केतोटि पल्ली गीत शिल्पी महाप्रसाद कर। शिल्पी पल्ली गीत गाइछन्ति पुरातन रचनारु। स्वर संयोजना एवं संगीत परिचालना प्रफुल्ल कर। प्रथम शिल्पी गाइछन्ति तळी भांगी कली।

0: ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
2: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम

0: में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी, जिसके बाद इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना केकेएनपी इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। एईआरबी द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देशभर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देशभर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2000

0: 26 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमरीका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कुत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियू हिस्यांग चिए और वांग ची लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाये रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है।

ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिन्दुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. U.S. President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under 17 Women's Asian Cup after 21 years in China. Repolling has started in 15 booths in 2 constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. More details on this from our correspondent.
3: Among these, 11 are in Pashchim Abrahat and 4 booths are in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered repolling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jamallo Bakchi will take up the matter today. Since vote counting scheduled for Monday, the Trinamool Congress requested an urgent hearing. Day before yesterday, Calcutta High Court Justice Krishna Rao dismissed the Trinamool Congress's petition, stating that the court cannot interfere in the Election Commission's decision.

0: चुआटा कांदो
1: तू आगा झरका किडी देलो काई की
0: मते से गोडर नाचो पसंद हैला निनु आमा
1: सब वर्ष त पसंद हुएलो काई छ मुंड रे करंज तेल मारी बेणी बांधी दौड़ी जाऊ आरसाई मुंड जाए ए वर्ष निज दांड रे घोडार नाचो ता संग रे भी पड़िला नै
0: ए वर्ष सूर्याई घोडा नाचो नाचुनी मत ता नाच भल लगे नु अम्मा ए वर्ष नाच रे ताल कोटी तो नाच कोटी
1: सूर्या सूर्या से मल्ला की गला खबर डबर नै पेट रे तरो सात मास रा पिला सूर्या टा साप लो साप
0: ए नु अम्मा पिछला कथा को कुरे कुरे मत कुंटा मानने गो भगवान आर जन्म रे अश्विनी बासुली जन्म दियो मते मते घोड़ा करी नारी रूप
1: जन्म न हौल फणा फणा नई पानी रे बाट बणा तू जन्म हले आउ गोटे सूर्या जन्म हबो आउ गोटे पापा फळिबो हेलो ए काई छु हेलो कुआडे जाउ छु अल से बाड़ी पटे को जा ना झुंटी पड़ी बोलो ए कहीं जा।

0: सूर्याई तू कोठी सूर्याई दरिया भितर छक्का फेरिला मकरा फेरिला तू कुआडे रही गलु समस्ते कहचंती तते विदेशी लोक धरिने पणबंदी करिचंती पुणी की कहचंती दरियार झड़ तोफान तो ना उलटी पड़ी तू बासी बासी जाए लगी को दूर टापुरे परे सूर्याई तू जीवार छ सत मस फेरबु तू केसबु पेटरे मोर तोरी संतक तू कौन था देखा चाहुन चाहुन से जन्म हो कुआ कुआ कांदु हाथ गोड़ हलु दरटी भाषा रे डाकु तते
1: काइचो ए काइचो
2: किए रंगिया माउसी
1: तो साबोत मा देखियो बोली मु लुचिकी बाड़ी पटे आसिली देख तो देख ये किए
2: मकरा
1: ठीक चिन्हिचु पैसा देकि या मुह बंद कर दैथला छक्का मु कहली देख मकरा मते मिछ कहो ना सत सतिका सबु कथा कहो सूर्या गला कुआडे डुमा गला कुआडे तू आउ छक्का किमिति फेरि आसी पारल
2: सूर्याई रो खबर तते जणा मकरा एते दिन लुचैथिलो कह कह से काही मोइली सिना गोला कुआडे
3: मते क्षमा कर दे काइचो अपा मोर लोभ मो मुह बांधी देथला आखिरे परल चढ़ी देथला हेले मो बड़मा राण खाई कहूची जहा कहबी सत कहबी
1: जल्दी कहरे दसा दिया नहले ता साबोतमा सुनिबो
3: काइचो अपा से दिन ठीक राती पाही पाही आसुथाय आमे आगरातिरु जालरे छ माइल पर्यंत बेढ़ करदेलु दरिया भितरे इलिश दल गोटे गारे माड़ आसुले आम आड़े गोटा गोटा इलिश्र ओजन दि के जी पखापाखी हबल मन आम करी उठला शहे कि देढ़श गदा हो गला नारे
4: पवन आला भाग्य मोर सुजने हो खोली गला भाग्य मोरा अशीण मास रे कसण गला हो कहीं चार बाहा घर।

0: 에? 에? 에? 에? 에? 누마! 나 먹더라! 적다!
1: 아마이!
0: 왜 이게 너나 뻣뻣한 왜래? 절어! 절어! 에! 적다! 이 뭔가 살아갖고 누마! 어쩌라고 쓰기 마하더래!
1: 두 점마 벼스도 하나 수리아이! 아래 얘 뻣뻣한 거희로 덕히나! 아래 어떠 건타로 우판에 히지버! 아래 에 누마! 아래 줄리 러가래! 아래 포카라 아우 마트 보자 가이바!
2: 그래 로고 먹거라 뽀뽀로 도무 땅도 거세도 어쩌거나 길리고
0: 아래 그래 뭔가 뭐 되게 와도 착가 그래 어떻다 라구지 또 버시마 아르고 나자 이렇게 우따라 아르고 자우쭈
2: 일리시다 기뚱 뿌라 저가 말이 그러니 수리야 뭔가 저기 척가 머리 넣고바래 다하니 눈이야래 개히 뭔가 저렇게 바쁘고 전거이니
0: 나 너더러 멀리 그 다하래 뿌리네
2: 에이 수리야 에이 아니 맞춰 먹혀야 말이야 쓰는다고 에이 아무 바뀌어 부리라잖아 에이 소프 맞춰라 하다니 그런 얘기 왜래 에이 먹거라 먹거라 아우라 말 아우라 말
0: 에이 말 말 먹거라 말 에이 누마
2: 아우라 말 아우라 말 아우라 말 너나 맞춰 먹혀 무릎 뛰다
0: 에이 말 말
2: 아우라 뛰다 말 아우라 뛰다 말
3: 에이 에이 아우라 번 거라 아우라 번 거라 스톱 아우라 번 거 넌가 아구고 인제 버리면 나이 एक इंच भी न है
0: है के तू हां डोंगा मोर
3: अच्छा
0: ए दरिया रे माछो धरिया पे सरकार हम को लाइसेंस दै छी
3: हां
0: के बे तू आ कहउची कोन ना डोंगा इचे जीवो नै दरिया रे जेमिति या बापरो
3: धमक दिबे ना आमा के धमक दिबे ना कथा बागे की कह बेसी सरकारी कथा कहो ना सब लाइसेंस पाई सारिया परे पान पत्र रे आमी आमी माने ए सिगदार जत पर्यंत सर्टिफिकेट ना दैची तत पर्यंत तो डंगा बेकार तोर माछ पच्चा तो आझाल कोना
0: ए सिकदार ए मेहनती मनुष्यर माछ खटी खैर रोजगार या ऊपर नजर पकेले तो आखी अंध हेइजबो
3: ए सूर्या हलो दशा अछि त सबु इलिसी मोरे टलर भितरे गदै दे मोर लोक नाहंती गोरी मजूरियां को कहो माल बोझेई करिवे टाणा टाणी हमार देरी होई जाछे
0: ए ए माछरा गोटे काती भी मिलि बनी तते
3: अच्छा
0: ए सिकदार पळी जा पोचेठो
3: चका धर तके ए रास्कलटा को पाले दबा को धर तके
0: सब अरे ए छाट चका बे गद्दार बे विश्वासघात का चोर बे
3: धर तके
2: कथा कम काम बेसी सूर्या सिकदार आदेश देले ये चका खून भी करि परे
0: गुमर खोली देवी गाँ सारा लोक जानवे तू
2: सिद्धारे दौड़ी फाशर बढ़ते तो गाँव में कहू ना
4: तू ए कौन कलु छका भाई सूर्या को मारी देलु घर को फेरी गाँव बाला को हमें कौन जवाब दबा
2: बेसी पट्टी करबु तो तत्ते भी शेष कर देबी जेमिति डुम्बारा गोड़ा काटी दै छी डुम्बा भी समुद्र रो माछ सबंक आहार होई जाई छी भाई
4: छका भाई तू एड़े नुसंस
3: ए माछ लोडिंग सरीला ह एनियो ओडिया 1000 टका दि जण जाको बांटी नबो ना छाड़ी के पलिया सब टलर को मो लोक नाटा को परे जबत कर ने इरफान टलर स्टार्ट कर।

0: देखिलु तो बड़ मा मु कहूची कांच अपाकू किछि कहना बिचारी ढेर कष्ट पाइबो एते दिन गलानी आउ नहले किछि दिन जाई थांदा बुझिलु बड़ मा छक्का भाई भी दी मास हला गायब
1: आलो कांच से पानी खिने कुआडे जाउछु आलो सुन आलो पेटरे पिला आछि परा अरे मकरा मकरा तू धाता पछर धारे मारे ता साबत बाकू मारी दबो कि कोन दउ दउ
0: कांच अपा कांच अपा

0: समृद्धि आणंतु।
1: इफ्को नैनो सारर चमत्कारिता रे प्रत्येक चाष एवं चाषी समृद्ध हेबे।
2: अभला गीतरे प्रसार करुछु केतोटी आधुनिक गीत। शिल्पी मंजुश्री त्रिपाठी एवं सुमिता पंडा। प्रथम शिल्पी मंजुश्री त्रिपाठी से गायछन्ती रवि नारायण सेनापतिंक रचना।

0: समृद्धि आणंतु।
1: इफ्को नैनो सारर चमत्कारिता रे प्रत्येक चाष एवं चाषी समृद्ध हेबे।
2: प्रचार करछु घोड़ा नाच गीत परिवेषण करछन्ति उत्सव चरण दास एवं साथी बाबाजी चरण समल, प्रहलाद समल, ध्रुव चरण समल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगण कर्मियों का चयन कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया था। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के पहले दो घंटों में 16% से अधिक वोट पड़े। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 4 मई को होगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फागन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କଲେ ସୀତାରାମ ଟୁଡୁ ଏବଂ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ।
1: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइजिबो। ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु।
2: ठीक लागुनी, स्कैम भी हेइ पारे।

0: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ व पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉयमाल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षक और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब

0: पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
3: We diversified our sources.
4: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज

0: आज गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटब�ल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: कार्यक्रम आम केन्द्र प्रचारित होमिटर तथा 972 किलोहर्ट्ज़ আমার পরবর্তী কার্যক্রম আঞ্চলিক।

ससहला कार्यक्रम आम आईन प्रयोजन सद्यस्मिता बेहरा उपस्थापन जयश्री प्रधान आकाशवाणी कटक शुणु कतोटी हिंदी कथाचित्र गीत प्रथमे मेरा नाम जोकर गीतटी गई मुकेश।

0: आकाशवाणी है प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं समाज में अंगदान को बढ़ावा देने वाले नीलेश विनोद चंद्रा मांडलेवाला के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है लोपा।
1: नीलेश भाई आपका बहुत हार्दिक स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे ख्याल आया कि आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है।
2: मेरे पिताजी की किडनी 97 में खराब हो गई थी और उस समय हमने मुंबई में उनका इलाज करवाया था। डॉक्टर भरत भाई ने कहा कि जो किडनी है उनके अंदर एक स्टेंट रखना पड़ेगा। 2004 में डॉक्टर ने कहा कि जो स्टेंट रखा था वो स्टेंट अभी काम करना बंद कर दिया है। अभी आपके पास दो इलाज है, या तो आप डायलिसिस कराओ या तो ट्रांसप्लांट कराओ। मैंने भी मेरे पिताजी को मेरी किडनी देने की बात कही कि मेरी किडनी आपको देता हूँ जिससे आपको अच्छी लाइफ मिल सके। मेरे पिताजी ने मना किया कि आपकी उम्र छोटी है। मेरे ब्रदर को भी मना किया कि मैं डायलिसिस के ऊपर ही रहूंगा। 2004 में मेरे पिताजी का हफ्ते में दो बार डायलिसिस शुरू हुआ और मैं मेरे पिताजी को जब भी डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल जाता था तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस वहाँ पे करवा रहे थे। और वहाँ पे ख्याल आया कि परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है तो क्या ऐसे मरीज को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि डायलिसिस की पीड़ा हमने तो देखी ही थी। तो डायलिसिस से व्यक्ति को जीवन तो मिलता है लेकिन वो क्वालिटी लाइफ नहीं होती है, क्वांटिटी लाइफ मिलती है। ये सोच, ये विचार कि मुझे डायलिसिस सेंटर के जो वेटिंग रूम है उसमें आता रहता था। 2004 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑनररी सेक्रेटरी था। उस समय बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती थी तो ऐसी मुलाकात उस समय के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख श्री चिनुभाई शाह हमारी चैम्बर की विजिट पे आए थे। तो चिनुभाई के साथ ऐसे एक अनौपचारिक बातचीत में किडनी के बारे में हम लोगों की चर्चा हुई और चिनुभाई ने कहा कि नीलेश भाई आप इतना सब जानते हो किडनी के बारे में, इतना सब काम करना चाहते हो, आप हमारी संस्था में जुड़िए। मैंने शुरुआत में प्रिवेंशन के ऊपर ही काम करना शुरू किया कि किडनी खराब ना हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, किडनी कैसे खराब हो जाती है उसके बारे में लोगों को समझाना शुरू किया। लेकिन मेरी सोच अलग थी। मेरी सोच थी कि जो लोग की किडनी खराब हो जाती है तो परिवार में से नहीं दे सकता है तो उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी। तो उसको क्वालिटी लाइफ मैंने जब ये रिसर्च किया तभी मुझे मालूम पड़ा कि ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगों के दान से उनको किडनी का दान हो सकता है। तो मैंने सूरत शहर के अस्पताल के आईसीयू के डॉक्टर का कॉन्टेक्ट करना शुरू किया, शहर के न्यूरो सर्जन न्यूरो फिजिशियन का कांटेक्ट करना शुरू किया। कैसे जब भी कोई ब्रेन डेड केस आता है तो हमें उनका जानकारी दीजिए कि जिससे हम उसका किडनी का दान करवा सके।
1: तो जब आप डॉक्टरों से मिलने जाते थे तो उनका रिस्पांस कैसा था?
2: 2005 की बात करें तो पूरे देश में अंगदान के बारे में बात ही नहीं थी और लोगों को ऐसा भी था कि एक जो टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ा हुआ आदमी है वो कैसे लोगों को अंगदान के बारे में समझा पाएगा। लेकिन मैंने मेरी पूरी बात बताई कि मैं क्यों ये क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। मेरे फादर का इंसिडेंट उन लोगों को बताया तो मैंने बोला कि आप हमें जानकारी दीजिए तो मैं कोशिश करूंगा। वहां से ये जर्नी की शुरुआत हुई थी और 12 जनवरी 2006 के दिन सूरत की अशक्त आश्रम अस्पताल में एक व्यक्ति ब्रेन डेड थे, उनकी जानकारी हमें दी गई। हम लोगों ने अस्पताल जाके परिवारजनों को अंगदान का महत्व समझाया।
1: उनका रिएक्शन कैसा था जब आप?
2: उसका वही था कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तभी हमने बताया कि ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है, लेकिन आप उनके किडनी का दान करोगे तो दो लोगों को नया जीवन मिलेगा और नया जीवन देने का काम ईश्वर का काम है और आप जब ये ईश्वरीय कार्य करते हो, जो दो व्यक्ति डायलिसिस पे जीवन जी रहा है तो उनको नया जीवन मिलेगा, एक डायलिसिस की जो पीड़ा है उसमें से उसको मुक्ति मिलेगी और वो परिवार ने हाँ कही।
1: पहले किडनी के लिए ही सोचा था आपने क्योंकि आपके फादर की किडनी के लिए आप डायलिसिस करवाते, तो उसके बाद में बहुत सारे अंगों का दान स्टार्ट हुआ जिसमें सूरत में ही पहली बार कृत्रिम हाथ का भी मतलब हुआ था, तो तब क्या आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है? और जब मैं डॉक्टरों से बात की तो वो जर्नी कैसे थी आपकी?
2: रूपा जी, उस समय गुजरात में केवल 5 साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट किया

अस्पताल थी 2005-6 की हम बात करें तो गुजरात में ट्रांसप्लांट भी केवल किडनी का ही हो रहा था। मैं बात करूं जनवरी 2006 में हमने किडनी का दान करवाया और दूसरे ही महीने 8 फरवरी 2006 के दिन सूरत के स्मीमेर अस्पताल में 24 साल का लड़का था वो ब्रेन डेड हुआ। हमने उनके पिताजी के साथ में किडनी डोनेशन की बात कही, उन्होंने हाँ कही तो हमने IKDRC को कॉन्टेक्ट किया और उसी समय हमारे सूरत के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का कॉल आया।

0: उन्होंने हाँ कही तो हमने IKDRC को कॉन्टेक्ट किया और उसी समय हमारे सूरत के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का कॉल आया कि नरेश भाई मुझे मालूम पड़ा कि आज आप किडनी का दान करवा रहे हो तो क्या लीवर भी पॉसिबल हो पाएगा क्या। तो मैंने कहा कि गुजरात में तो लीवर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं रहा है तो लीवर भेजेंगे कहाँ पे। तो उन्होंने कहा वो चिंता आप छोड़ो मैं बाकी की व्यवस्था करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं ये बातचीत करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको जितने भी ऑर्गन्स का डोनेशन हो सकता है वो करवाइए। तो फिर लीवर का डोनेशन हम लोगों ने करवाया और वो लीवर हैदराबाद की ग्लोबल अस्पताल में भेजा गया था। किडनी अहमदाबाद की IKDRC में डोनेट की गई। मैं बात करूं तो हैंड डोनेशंस का 2015 में हैंड डोनेशन और ट्रांसप्लांट की शुरुआत हुई। कोची में पहला देश का हैंड का डोनेशन और ट्रांसप्लांट हुआ था। लेकिन सूरत ने अक्टूबर 2021 में सबसे कम उम्र के बच्चे का 14 साल के बच्चे का हैंड का डोनेशन सूरत से करवाया था। वो देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का हैंड का डोनेशन उस समय था। लेकिन सितंबर 2024 में हमने सूरत से ही वलसाड की एक 9 साल की बच्ची का हैंड का डोनेशन करवाया था। सभी डेटा हमने देखा तो उसके हिसाब से वो जो बच्ची है वो सबसे यंगेस्ट है इन वर्ल्ड हैंड डोनेशन के अंदर। सूरत से 4 या 5 दिन के बच्चे की किडनी का भी दान हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि सूरत से जो 2017 में एक 14 महीने का बच्चे का हृदय का भी डोनेशन हुआ था और उस समय देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के हृदय डोनेशन की पहली घटना थी। और उसका जो ट्रांसप्लांट है वो ट्रांसप्लांट मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची में हुआ था। इसी तरह से कोरोना के समय में पूरे देश में अंगदान की प्रवृत्ति बहुत कम चल रही थी और उस समय भी सूरत से लगातार ऑर्गन डोनेशन हो रहे थे। और उसी समय दिसंबर 2020 में सूरत से एक 2.5 साल के बच्चे का उनके किडनी लीवर हृदय फेफड़े और नेत्रों का दान किया गया और देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के मल्टीपल ऑर्गन डोनेशन की वो पहली घटना थी।
1: ऐसा कोई किस्सा जो आपके दिल को छू गया हो, से बात की और आंखों में आंसू आ गए?
0: लोबा जी, हर एक किस्सा जो है वो दिल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है क्योंकि किसी को अंगदान के लिए तैयार करना, राजी करना और ऐसे समय पे जब ये परिवार में रुदन है, आक्रंद है और ये कंसेप्ट को समझा के उसको तैयार करना और बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। हम लोग भी रोते हैं लेकिन हर एक केस अलग अलग है। लेकिन मुझे दो केस बहुत ही टच किए हैं। वो एक है जो 2017 में 14 महीने का लड़का था, उसके हार्ट और दूसरे अंगों का दान करवाया था। वो बहुत ही मुझे टच हुआ था क्योंकि पहली बार मैं इतने सालों में इतने छोटे बच्चे के परिवार के साथ काउंसलिंग कर रहा था और जब भी मैं सिविल अस्पताल के अंदर उनको काउंसलिंग किया और जब ये ऐसा फूल जैसा मासूम बालक सोया हुआ था, ऐसे बच्चों को, बच्चे के परिवार को समझाना बहुत ही कठिन था। लेकिन मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि माता पिता को कि जिन्होंने ये निर्णय किया, बहुत सामान्य परिवार से वो लोग है, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने हाँ कही तो उनके जो हृदय का दान हुआ और उनके हृदय दान की वजह से मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची जो 16 महीने से बेड पे ही रही थी, ऐसी बच्ची को नया जीवन मिला। और उसी तरह जब भी हमने हैंड्स का डोनेशन जो करवाया था और अक्टूबर 2021 में जो लड़का था वो लड़के का हैंड का डोनेशन करवाया, वो भी बहुत ही, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स का डोनेशन करवाना अलग है और एक्सटर्नल ऑर्गन्स का डोनेशन करवाना अलग है। इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ दिखता नहीं है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में पूरी मानसिकता बदल जाती है।
1: ये पूरी जर्नी में अपने डोनेट लाइफ नाम कैसे आपने चूज किया?
0: नहीं, मैं तो 2005 से कार्य शुरू किया था। 2013 में सूरत के जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे उनकी किडनी खराब हो गई थी और चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर उनका कॉल आया कि हमारे एक ऑफिसर की किडनी खराब है, आप क्या हेल्प कर पाओगे? तो मैंने उनको कहा कि मैडम मैं और तो कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा लेकिन सर को गाइडेंस दे पाऊंगा। तो सर का नाम IKDRC में रजिस्टर्ड हुआ, वहीं सर अहमदाबाद ही रुके और वहीं डायलिसिस भी उन्होंने शुरू करवाया। थोड़े महीनों के बाद सूरत से एक किडनी का डोनेशन हुआ और वो किडनी सर के अंदर ट्रांसप्लांट हुई। उनमें ट्रांसप्लांट हुई तो सर ने बताया कि नीलेश भाई आज मुझे नया जीवन मिला है तो मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, हम लोग मिलके

0: ट्रस्ट बनाते हैं और वो ट्रस्ट बना के हम लोग नेशनल लेवल पे प्रवृत्ति को लेके चलते हैं। लेकिन मैंने मना किया कि सर मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि ट्रस्ट बनाना आसान है, चलाना मुश्किल है और टिकाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो सर खुद यूपी से थे तो उन्होंने बोला कि हम लोग बनाएंगे। फिर एक साल के बाद मैंने हाँ कही तो अभी नाम क्या करना है उसके ऊपर सोच विचार हुई। बहुत से अलग अलग नाम, हमारी जो टीम थी हम लोग साथ में बैठते थे, तो फिर इसमें सोच आई कि जो हमारा हम जो कार्य कर रहे हैं वो लोगों को जीवन देने का ही कार्य कर रहे हैं, तो ये डोनेट लाइफ के नाम से ही हम लोग ट्रस्ट बनाएंगे और डोनेट लाइफ नाम हमने फाइनल किया।
1: 25 सालों की मेहनत, जब पद्म से अवार्ड के लिए आपका नाम गया, जब आपको पता चला, तब फैमिली के फ्रेंड्स को आपके रिएक्शन क्या?
0: मेरे पास इसके लिए कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि मैं मेरी लाइफ को देखता हूँ आज इतने सालों की, वो कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि भाई ये जगह पे हम लोग पहुंचेंगे। क्योंकि जो परिवार में ऑर्गन खराबी है और वो परिवार को जब भी किडनी मिलती है, लीवर मिलता है, हृदय मिलता है, फेफड़ा मिलता है, इवन हैंड का डोनेशन से उनको ट्रांसप्लांट होते हैं, तो उनके और उनके परिवार के चेहरे पे जो खुशहाली आती है वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। भारत सरकार ने जो हमें सम्मान दिया है, ये सम्मान है जिन ब्रेनडेड व्यक्ति के परिवारजनों ने अपने ब्रेनडेड स्वजन के अंगों के दान करवा के हजारों अंग विफलता के मरीजों को जो नया जीवन दिया है, इन सभी का सम्मान है। मैं हमेशा कहता हूँ जो नींव रखी गई वो इतनी मजबूत नींव थी, जो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी हुई आज मजबूत है, जो बीज बोया बीज आज वटवृक्ष बना और कितने लोगों को नया जीवन दे रहा है।
1: आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको अंगदान के बारे में जागरूकता नहीं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे और अंगदान जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए, वो लोगों
0: को मेरा एक ही मैसेज है कि आपको ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझना चाहिए और हमें उससे ऑर्गन डोनेशंस करवाना है। लोग ऐसा मानते हैं अंगदान नहीं करना चाहिए। हम हमारे शास्त्रों में देखेंगे तो पृथ्वी पे सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ और महर्षि दधीची ऋषि ने जब दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में है। आज लोग अंगों की बात छोड़िए, आंखों का दान करने से भी लोग आज आगे नहीं आते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी आत्मा पहले चली जाती है और जो हम उनका अग्निदाह करते हैं, जो पार्थिव देखा, वो तो सिर्फ एक खोखा ही होता है। आज हमारे देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत समय सर अंग न मिलने की वजह से हो रही है। हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई ने हमें 2047 में जब भी हमारा देश आजादी की शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तभी हमारा देश विकसित भारत होगा वो परिकल्पना हमें दिखाई है। हमारी संस्था ने भी एक मिशन बनाया है कि 2047 में जब भी हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। ये प्रोग्राम में हम अभी यूथ को तैयार कर रहे हैं। हम यूथ को बोल रहे हैं कि जो 20 साल पहले जो हमने बीज बोया था वो बीज आज वटवृक्ष बना है, लेकिन आगे की रेस आपको कंप्लीट करनी है।
1: तो ये थे दिलेश भाई मालेवाला, जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की वो बताया और इनके लिए हूँ इनके बहुत ही आभारी है।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी समाज में अंगदान को बढ़ावा देने वाले नीलेश विनोद चंद्रा मांडलेवाला के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी लोपा।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।
4: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅସରାନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ। ଆଜି ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ପ୍ରଥମେ କଥାଚିତ୍ର ଅନ୍ଧା କାନୁନ, ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଶା ଭୋସଲେ।

0: तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटी और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

देवताओं, संतों और दुष्टों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ ये समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले जल की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही वन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़

और उनकी वंदना करते हुए अपने अल्पबुद्धि तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं। मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ढिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के अंक में संपादकीय में हम बात करेंगे अशांत समय में वैश्विक शांति के संदर्भ में महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा और कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य में साम्य के बिंदु। हमारी अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में कुछ विशेष टिप्पणियां। उसके बाद हम बात करेंगे जनजातीय भाषाओं के साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना के विषय में। और हमारी अंतिम प्रस्तुति होगी आकाशवाणी में उप महानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे के नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ होंगी उनकी पुत्रियां सीमा सागर और सुजाता सहाय।

जब हम विश्व शांति की बात करते हैं तो इतिहास और साहित्य हमें ऐसे अनेक स्रोत प्रदान करते हैं जहां पर मानवता की सबसे उज्जवल आकांक्षाएं अभिव्यक्त हुई हैं। आज जब हम चारों ओर देख रहे हैं, युद्ध की आहटें हैं, भय की परछाइयां हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवारें ऊंची होती चली जा रही हैं, ऐसे में रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य हो या महात्मा बुद्ध का दर्शन और उनकी प्रज्ञा, दोनों ही मनुष्य के भीतर करुणा, सह अस्तित्व और आत्मिक संतुलन की स्थापना पर बल देते हैं। कवि गुरु टैगोर की बात करें तो वो केवल बंगाल के कवि नहीं थे, केवल भारत के नहीं थे, वे उस समूची मानवता के कवि थे जो सीमाओं से परे जाकर सोचती है और जो प्रेम को ही जीवन का सत्य मानती है। अशांत समय में टैगोर का काव्य एक दीपक की तरह है जो ये नहीं कहता कि अंधेरा नहीं है, पर ये अवश्य कहता है कि प्रकाश संभव है। टैगोर ने गीतांजलि में लिखा, मनुष्य की आत्मा की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है, पर वो ईश्वर किसी मंदिर में नहीं, वो श्रमिक के पसीने में, किसान की माटी में और बच्चे की हंसी में बसा है। ये विचार कितना क्रांतिकारी था उस समय के लिए और आज भी कितना ताजा है। उनकी कविता शांति का केवल आह्वान भर नहीं करती, वो शांति की जड़ें खोजती है, वो जड़ें जो मनुष्य के भीतर हैं, करुणा में, सह अस्तित्व में, प्रकृति के साथ तादात्म्य में। और वही महात्मा बुद्ध के उपदेशों में अहिंसा, मध्यम मार्ग और मैत्री जैसे सिद्धांत विश्व शांति की ठोस आधारशिला रखते हैं। बौद्ध साहित्य, विशेषकर धम्मपद, हमें ये सिखाता है कि द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम ही उसका अंत करता है। टैगोर की रचनाओं में बार बार एक ऐसे विश्व का स्वप्न उभरता है जहां सीमाएं नहीं संवाद हो, जहां भय नहीं विश्वास हो। उनकी ये प्रसिद्ध प्रार्थना मन हो निर्भय जहां, दरअसल एक ऐसे वैश्विक समाज की कल्पना है जो शांति और नैतिकता पर आधारित है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि और टैगोर के काव्य में एक गहरा

साम्य है, मानव केंद्रित चिंतन, अहिंसा की अनिवार्यता और आंतरिक शांति को बाहरी शांति का आधार मानना। आकाशवाणी जो दशकों से विचार और संवेदना का सेतु रही है, ऐसे विमर्शों के माध्यम से न केवल अतीत की धरोहर को संजोने का प्रयास कर रही है बल्कि वर्तमान को भी एक नई दिशा देना चाहती है, संवाद, सह अस्तित्व और शांति की दिशा में। साहित्य भारती की ओर से ये संपादकीय महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा और विश्व कवि को नमन है, जिनकी वाणी में वैश्विक शांति का स्वर आज भी जीवित है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर, 90 वर्षों में कितनी आवाजें, कितने शब्द, कितने स्वप्न इस माध्यम ने सजोए हैं, सवारे हैं। साहित्य का ये विस्तार आकाशवाणी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला।
1: एक सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था कि एक कहानी चुनिए और उसका एक पात्र चुनिए, साहब उस पर एक वार्ता 10 मिनट की। तो जैसे मुझसे कहा गया तो मैंने तीसरी कसम कहानी चुनी, जिस पर फिल्म बनी है रेणु जी की, तीसरी कसम कहानी चुनी और हीरामन जो उसका कैरेक्टर है वो पात्र चुना मैंने। तो ये एक सिलसिला था उनका पूरा कि अपने से आप कहानी चुनी है, लेकिन बताना पड़ता था कि हमने ये कहानी चुनी है, ये पात्र, ताकि रिपीटिशन न हो। ये इस तरह के कार्यक्रम हुए। फिर साहित्यकारों पर वार्ताएं हुई, कहे कि साहित्यकार चुनिए साहब। फिर कहें आप उर्दू के साहित्यकारों पर लिख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब उर्दू मजलिस जो है, अब वह हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य सब अब दूरदर्शन पर, तो धारावाहिक बाद में शुरू हुए हैं। रेडियो ने पहले शुरू कर दिया धारावाहिक। एक धारावाहिक कार्यक्रम चला था यहाँ, जिसमें धारावाहिक कार्यक्रम ये चला था कि एक लेखक और उसकी कोई रचना, वो होगा आधा घंटे का, रिकॉर्डिंग आधा घंटे की होती थी, लेकिन 5-5 मिनट के 6 एपिसोड होते थे। मतलब 6 दिन तक, मंडे टू सैटरडे, वो 5-5 मिनट सुनाया जाएगा। तो एक लेखक चुनना है आपको और उसकी एक किताब चुननी है, तो उसको आपको 6 एपिसोड में बांटना है और 5-5 मिनट के हों, जिसमें लेखक के बारे में और एक जो कृति चुना है आपने उसके बारे में जानकारी श्रोताओं तक पहुंच जाए। ये एक धारावाहिक शुरू किया गया। ये जब चुना गया तो हमसे पूछा गया, हमने उनसे कह दिया कि मैं लेखक तो कालिदास और रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, जो उनका नाटक है मुझे। तो फिर मैंने 2 जो एपिसोड है वो तो मैंने लेखक के बारे में लिखा, तो रिकॉर्डिंग जब हो गई तो जब प्रसारण उसका हुआ तो हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं रमानाथ अवस्थी उठकर गले लगा रहे हैं मुझे, सुना तुमने क्या साहब लिखा है। तो मैंने देखा कि आकाशवाणी कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है कि विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक कृतियों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में कैसे जन जन तक पहुंचा रहा है। क्योंकि जिस जमाने में नहीं था टेलीविजन, जिस जमाने में ये नहीं था, उस जमाने में तो एक ही माध्यम था ना कि लोगों तक पहुंचने का, वो श्रव्य माध्यम था, और श्रव्य माध्यम था रेडियो, ट्रांजिस्टर, तो आकाशवाणी। तो यह इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है। आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि ये भी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
0: 90 वर्षों का आकाशवाणी का सफर ये महज एक संख्या नहीं, बल्कि 90 वर्षों की सेवा, 90 वर्षों की साधना और 90 वर्षों की आवाजों का उत्सव है। भारत की आत्मा का संबंध उन भाषाओं से बहुत गहरा जुड़ा है जिन्हें हम जनजातीय भाषाएं या बोलियां कहते हैं, संथाली, गोंडी, भील।

0: मुंडारी, कुड़ुक, बोडो ये सिर्फ भाषा या बोलियां नहीं है, ये जीवन दर्शन है। इन भाषाओं के साहित्य में मनुष्य की वो आदिम चेतना है जो आज के भौतिक युग में हम खोते जा रहे हैं। आदिम चेतना यानी वो बोध जो प्रकृति को माँ मानता है, जो नदी में देवत्व देखता है और जो पशु पक्षियों से संवाद करता है, जो धरती को केवल संपत्ति नहीं एक जीवित सत्ता मानता है। संथाली की लोक कथाओं में स्त्री की स्वतंत्रता का उत्सव है। गोंडी गीतों में वन और मनुष्य के बीच का वो रिश्ता है जो आज के पर्यावरण संकट के समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, जनजातीय भाषाओं का साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना।
1: एक प्राचीन कहावत है, जब एक वृद्ध की मृत्यु होती है तो मानो एक पूरा पुस्तकालय जलकर राख हो जाता है। यही बात भारत की सैकड़ों जनजातीय भाषाओं के बोलने वालों पर भी उतनी ही लागू होती है।
2: भारत की जनजातीय भाषाओं में बसा साहित्य कागज के सफेद पन्नों का मोहताज नहीं रहा। ये तो एक ऐसी वाचिक विरासत है जो पुरखों की सांसों से होती हुई हमारी रगों तक पहुंचती है।

0: जब हम इन कथित हाशियों की भाषाओं के भीतर उतरते हैं तो पता चलता है कि यहाँ का साहित्य एक जीवित ज्ञान परंपरा है।
1: अरुणाचल की मिश्मी कहानियों में हवाओं के रुख को पहचानना हो या नीलगिरी की इरुला जनजाति के गीतों में छिपी जड़ी बूटियों का गहन रहस्य जानना हो तो प्रकृति के साथ जीवन ही एकमात्र तरीका है। चाहे वो लद्दाख के ब्रोकपा समुदाय के हजारों साल पुराने आर्य गीत हो, अंडमान की ओंगे जनजाति की लहरों को समझने वाली कथाएं, या मेघालय की खासी लोक कथाओं का मातृसत्तात्मक दर्शन, ये सब हमारी सामूहिक चेतना के शिलालेख हैं।
0: आज हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रही हैं जनजातीय साहित्य और संस्कृति की जानी मानी विशेषज्ञ दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा मीणा।
2: सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जनजाति जो शब्द है ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक शब्द है, जबकि लोक प्रचलन में आदिवासी शब्द का प्रयोग होता है। आदिवासी समुदायों ने हजारों सालों के अपने जीवन के अनुभव, जो उनकी ज्ञान परंपरा जिसकी हम बात करते हैं उसमें उनके जीवन के अनुभव हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण उसका ज्ञान है, ये ज्ञान है उनकी कहानियों में, गीतों में, परंपराओं में, उनकी जीवन शैली में, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है। मुख्य धारा का जो साहित्य है उसे दो भागों में हम मोटे तौर पे विभाजित करते हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लेकिन आदिवासी बुद्धिजीवी अपने साहित्य को हिंदी के लोक और अंग्रेजी के फोक लिटरेचर से अलग उसे ओरेचर कहते हैं, ओरल लिटरेचर, जो कि पुरखौती साहित्य है। और इनका जो मौखिक ज्ञान है ये लिपिबद्ध करने का काम अंग्रेज अध्येताओं ने किया था। 600 से ज्यादा आदिवासी भाषाएं हैं, 100 से अधिक भाषाओं में लिखित परंपरा है। बहुत सी ऐसी भाषाएं भी हैं जिनकी लिपि नहीं थी लेकिन दूसरी लिपि का इस्तेमाल किया गया, जैसे पूर्वोत्तर में बहुत सारा साहित्य रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है। कुछ उदाहरण मैं देती हूँ। देखिए, मिशनरी पीओ बोर्डिंग ने संताल पुरखौती कथाओं का रोमन लिपि में प्रकाशन किया था 1924 में। WG आर्चर ने 1945 में संताल पुरखौती गीतों का संग्रह किया था। और अभी 2006 में अन्विता अब्बी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लुप्त प्राय स्वदेशी भाषाओं पर व्यापक शोध कार्य किया गया है। फादर हाफमैन द्वारा संकलित मुंडा गीतों का भी यहाँ जिक्र करना जरूरी है। जब मैं कहती हूँ कि एक भाषा में एक समाज का ज्ञान संरक्षित होता है तो मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी। राजस्थान, क्योंकि एक मरुस्थल क्षेत्र है, वहाँ बरसात का बहुत महत्व है। आप देखेंगे कि राजस्थानी भाषा में हर एक माह में होने वाली बारिश के लिए एक अलग शब्द है। वहाँ ऊंट के लिए 270 से भी ज्यादा पर्यायवाची शब्द मौजूद है। तो ऐसे में राजस्थानी संस्कृति को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना और उसको सहेजना बहुत जरूरी है। अंडमान द्वीप समूह में एक भाषा है बो, जिसके

0: बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। अंत में बोआ नाम की एक महिला बची जो उस भाषा को बोलती थी, समझती थी। उस भाषा का संरक्षण नहीं किया गया और 2010 में उसकी मृत्यु के साथ वो भाषा खत्म हो गई। आदिवासी साहित्य में स्वानुभूति बनाम सहानुभूति की बहस नहीं है, वहाँ अनुभव की आधिकारिकता पर बल है। और इसीलिए आप देखेंगे कि गैर आदिवासी लेखक भी इसमें शामिल है आदिवासी साहित्य में, जिसे संजीव हैं, राकेश कुमार सिंह, महुआ मांझी, गणेश देवी। और इसके साथ ही आप देखेंगे 90 के दशक के बाद आदिवासी भाषाओं में जो लेखक हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। रामदयाल मुंडा, हेराल्ड तोपनो, वॉल्टर भेंगरा, मंगल सिंह मुंडा, महादेव टोप्पो, निर्मल मिंज, अनुज लुगुन, हरिराम मीना, शंकरलाल मीना। और स्त्रियां भी आदिवासी लेखन में बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। आदिवासी समाज का चित्रण उनकी रचनाओं में बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। इनमें आप देख सकते हैं मंजू ज्योत्सना, वंदना टेटे, सरोज केरकेट्टा, एलिस एक्का, जसिंता केरकेट्टा, वासवी कीड़ो, जिन्होंने आदिवासी जो योद्धा महिलाएं हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छी किताब उनकी निकली है। शांति खलको है, बिटिया मुर्मू है, सुषमा असुर है, बहुत सारे नाम हैं। सुशीला सामत जो कि पहली आदिवासी कवित्री और संपादक हैं और 1930 के दशक में लिख रही थी जब महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही थी, लेकिन इनका कहीं जिक्र नहीं मिलता। सीता रत्नमाला जिनकी आत्मकथा जो अभी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगी है, 1968 में उनकी आत्मकथा लिखी गई थी और उससे पहले बहुत सारी कविताएं और नाटक उन्होंने लिखे हैं जो कि विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन हिंदी के लोग उससे परिचित नहीं थे। हिंदी में परिचय तब होता है जब अश्विनी कुमार पंकज उनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद करते हैं।
1: अकादमिक समझ के साथ साथ इस साहित्य को जमीनी स्तर पर सहेजने की कोशिश भी उतनी ही जरूरी है। इसी सिलसिले में हमारे अगले मेहमान डॉक्टर करमचंद हंसदा बीते कई वर्षों से जनजातीय समुदाय के बीच काम कर रहे हैं।
2: जब हम जनजातीय साहित्य को करीब से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यह महज शब्दों का मेल नहीं बल्कि हमारे समाज के जीने का ढंग है। अक्सर हम बिरसा मुंडा को एक योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में एक नए विचार विषेद की शुरुआत की थी जो सादगी और प्रकृति की पूजा पर आधारित था। साहित्यिक दुनिया में अगर हम देखें, एलिस एक्का का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। वो हिंदी की पहली जनजातीय महिला कहानीकार मानी जाती है। वहीं निर्मला पुतुल जब वो आधुनिक समाज से सवाल करती है कि आपकी प्रगति हमारे विनाश की कीमत पर होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में तैमसुला आओ जैसे लेखक हैं जिन्होंने नागालैंड की लोक कथाओं को दुनिया के सामने रखा। यह लेखक हमें सिखाते हैं कि जनजातीय समाज में कोई सुपर हीरो नहीं होता, यहाँ पर समुदाय ही नायक है। हमारी कहानियों में चींटी से लेकर हाथी तक और पहाड़ से लेकर नदी तक सबका बराबर का सम्मान है। आज जब हम जनजातीय साहित्य महोत्सवों की बात करते हैं तो हम दरअसल इसी सामूहिक चेतना को बचा रहे होते हैं। यह साहित्य समाज को बताता है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं है। अंत में यही कहूंगा कि इन आवाजों को सुनना और पढ़ना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है।
3: जनजातीय साहित्य क्रांति की गर्जना, चेतना की पुकार, सशक्तिकरण का शंखनाद और प्रकृति के साथ मनुष्य के उस शाश्वत संवाद की अभिव्यक्ति है जो सदियों से अटल है।
1: असल में ये वो साहित्य है जहां एलिस एक्का की संवेदनाएं बोलती हैं और निर्मला पुतुल की कविताएं हमें उन इलाकों में ले जाती हैं जहां हमारी आदिम सभ्यता के गीत बस गए हैं। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
3: और मैं प्रांजल।
4: अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आकाशवाणी में उप महानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे स्वर्गीय के नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर एक लघु चर्चा। एक किताब जब किसी के जीवन की कहानी हो तो वो केवल साहित्य नहीं रहती, वो एक धरोहर बन जाती है। उसने कुछ मुझसे कहा ये शीर्षक ही अपने भीतर एक पूरा संसार समेटे हुए है। किसने कहा, क्या कहा और सुनने वाला कौन था? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम आज इस पुस्तक के सबसे करीबी साक्षियों से बात कर रहे हैं। उनकी बेटियां सीमा सागर।

0: और सुजाता सहाय, जिन्होंने विनोद सहगल के संगीत निर्देशन में अपने पिता की इन रचनाओं को सुरों में भी बांधा है। सुनते हैं ये बातचीत। सुजाता जी, आप पहले तो इस किताब के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: पापा सब जानते हैं कि वो बहुत ही मशहूर ब्रॉडकास्टर थे, बहुत नामी, बहुत ज्ञानी, बहुत जाने माने, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता था कि वो लिखते थे। एक दौर था जब वो मुशायरों में जाते थे बाकायदा, लेकिन फिर वो दौर कुछ दिनों बाद नहीं रहा, पर उनका लिखना चलता रहा। वो जो लिखते थे वो खुद के लिए लिखते थे, वो किसी को बहुत आसानी से ना सुनाते थे ना वो शेयर करते थे। जब उन्हें लगता था कि सामने वाला इस लायक है कि उसको सुनाया जाए तभी वो सुनाते थे। तो डायरियां थी उनकी बहुत सारी जिनमें वो लिखते थे, वो डायरियां खो गई, सामान इधर से उधर हुआ, तो जो भी हमें मिला, हमें कोई राइटिंग पैड, जिस उनको जहां जगह मिलती थी वो थोड़ा सा लिख लेते थे, तो जो जो हमें मिलता गया हम उसको इकट्ठा करते गए। परेशानी ये थी कि वो उर्दू में था, एक और परेशानी ये थी कि उन्हें स्ट्रोक हुआ 98 में, तो उसके बाद उनका हाथ हिलता था लिखने में, तो वो आम आदमी जो उर्दू पढ़ लेता था वो नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि वो जो लिखावट थी हाँ उसमें बहुत शेकी था। तो बड़ी किस्मत से हमें एक शायर साहब मिले, तो उन्होंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने किन्हीं के साथ, ये बहुत हाल ही की बात है, अभी शायद पिछले महीने की, उन्होंने उसको हिंदी लिपि में किया, मेरी बहन ने उसको एक किताब का रूप दिया, क्योंकि हम चाहते थे, इतना खूबसूरत वो लिखते हैं, आप भी पढ़ेंगी तो आपको एहसास होगा कि कहाँ जा रहा है ये, तो आपको भी वो सोचने पे मजबूर करता है। तो हम चाहते थे कि ये जो भी उन्होंने लिखा है वो दुनिया तक।
0: सीमा जी, ये यात्रा कैसे शुरू हुई कि आपको कुछ पुराने लिखे हुए उनके कुछ मजमून मिले जिनको आपने सोचा कि आपको ये को पहले तो आपको लिप्यांतरण ही कराना पड़ा इसका कि वो उर्दू में थी, फिर आपको इसे देवनागरी में करना था, अच्छी खासी मशक्कत का काम था। तो सीमा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जब आपके हाथ लगा, आपके पिताजी होते तो क्या चाहते इसे पब्लिश करना या नहीं?
2: पापा शायद ना चाहते, क्योंकि वो बहुत संकोच करते थे, जैसे सुजाता ने बताया कि अपनी शायरी भी वो बहुत गिने चुने लोगों को सुनाते थे। लेकिन मुझे एज अ डॉटर, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये हमको दुनिया को, दुनिया के साथ ये शेयर करनी चाहिए इनकी शायरी, और इरादा हमारा बिल्कुल पक्का था, तो ये तो हमको काम करना ही था, और ये बहुत खूबसूरती से ये काम हुआ है।
0: और लग गया तो ये सवाल भी पूछते चले, जैसे अभी हमें मौका मिला था कि कुछ दिनों पहले आपने जो एक आयोजन किया जहां आपने इनमें से कुछ चुनी हुई गजलों को, नज्मों को आपने संगीत में ढाला है और आपने गाया, आप दोनों बहनों ने उसमें स्वर दिए हैं अपने, और साथ में विनोद सहगल जी का भी साथ आपको मिला, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आपको क्यों लगा कि ये संगीत में इसे ढाला जाना चाहिए, क्या इसके पीछे मोटिवेशन रहा?
2: जी बिल्कुल, हम दोनों को ये लगा कि इसे संगीत में डालना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत बहुत लोगों तक पहुंचता है, सब लोग शायद पोइट्री शायरी को ना पढ़ना चाहें, और लेकिन संगीत तो हर कोई सुनता है, और लगा कि इसको अगर हम संगीत में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा। इसमें जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो है विनोद सहगल जी, जो अचानक ही एक प्रोग्राम के दौरान लखनऊ में मेरे फादर को मिले, और क्योंकि वो अंबाला में रहते हैं, मैं उनसे अक्सर मिलती रहती हूँ, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर आप जा रहे हैं लखनऊ तो आप उनको, मेरे फादर को जरूर मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा उन्हें मिलके। तो वो उन्होंने वक्त निकाला, वो घर गए, उनसे मिले, और बातचीत के दौरान ही उनको ये रियलाइजेशन हुई कि ये तो बहुत अच्छा लिखते हैं, और ये पोइट्री ऐसी है इतने खूबसूरती से मीटर में सेट है, तो इसको मैं, इसमें मैं म्यूजिक में इसको कंपोज कर सकता हूँ, वो ख्याल उनको आया। और बाद में जब वो वापस लौटे अंबाला तो उन्होंने ऐसे बात करा, इसका जिक्र किया, तो मुझे लगा कि हाँ क्यों ना हम ये काम करें। और देखते ही देखते वो खुद कहते हैं, ये उनके शब्द हैं, कि ये नैयर साहब की पोइट्री है, मैं इसे इतना प्रभावित हुआ कि मेरे अंदर से धुन अपने आप बनती चली गई, और ये तो पोइट्री का कमाल है कि इतनी खूबसूरत धुनें बन गई, और जब बन गई तो मुझे ख्याल आया कि इसको हम रिकॉर्ड क्यों ना करें।
0: आप लोग क्योंकि

0: गहरे जुड़े हैं, इससे ज्यादा गहरा जुड़ाव क्या होगा, आप पैदा हुए उसी
1: माहौल में,
0: छत्र छाया में। हाँ, तो आप ये बताइए कि आकाशवाणी का एज एन इंस्टीट्यूशन क्या था, अभी क्या है और आपको क्या उम्मीदें हैं?
1: हम तो पले बड़े इसमें बच्चों के प्रोग्राम करने से, फिर थोड़े बड़े हुए तो वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम करने से, फिर हर रात हम इंतजार करते थे हवा महल का तो बहुत सारे प्रोग्राम्स और पापा के प्रोग्राम्स तो हम सुनते ही थे, तो रेडियो तो चलता ही रहता था, कभी बंद ही नहीं होता था घर पे।
2: जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज ऑफ डिक्शन जो आकाशवाणी में है, जो आपके अनाउंसर्स हैं, आपके जो प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं, जो आप भाषा यूज करते हैं और किस तरह से आप उन शब्दों को कहते हैं, हम मुझे याद है बचपन में जब मैं कोई गलत वर्ड यूज करती थी, मेरे फादर मुझे इमिजिएटली टोकते थे कि तुम ये गलत कह रही हो, और फिर मैं ध्यान से आकाशवाणी का प्रोग्राम सुनती थी कि अच्छा ये लफ्ज कैसे कहा गया, और मैं उससे सीखती थी। दैट वॉज माई बैरोमीटर। आई लर्नड लैंग्वेज, आई लर्नड डिक्शन
1: कल्चर
2: फ्रॉम कल्चर। सो आकाशवाणी इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया। जो युवा पीढ़ी है ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे है कि वो इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को आगे ले जाएं और बाखूबी ले जाएं। ये बहुत जरूरी बात है।
1: बस एक आखिरी बात, आपने पूछा कि पापा क्या पापा चाहते कि ये किताब छपे, तो मैं कहती हूँ शायद वो मना करते, ऊपर से कहते नहीं नहीं ये मैं नहीं चाहता, लेकिन अंदर से वो बहुत
2: दिली दिल बहुत खुश होते कि ये छप गई है।
0: आपसे एक दरख्वास्त है कि आप लोग एक एक अपनी पसंदीदा कविता या नज़्म में अगर कुछ उसकी कुछ पंक्तियाँ हमें, पहले सुजाता जी।
1: इसको पढ़ के मैंने सोचा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है वो पहली बारिश। जब जब आई बरखा रुत की पहली बारिश, भीगी भीगी बोराई सी चले हवाएं, चेहरे को छूकर निकले गीले गीले पोरों से पलके सहलाएं, बरखा भीगी सड़क लगे जब खाली खाली, तभी अचानक एक कोने में हंसते गाते धूम मचाते, सावन की पहली बूंदों का शगुन मनाते, आ जाएं अपने साईं जी, लंबी पलके प्यारी आंखें सावन चेहरा, चेहरे पर झूमे लहराए सावन, भीगी लंबी काली घट अलबेली हाथ में चिमटा, ताल से ताल मिलाएं। इसको पढ़ के मैंने सोचा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हम जब बारिश आती है तो हम निकलते बाहर नहाते हैं, खेलते हैं कूदते, ये साईं जी कौन है? मुझे लगा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा शायद साईं जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि पुराने जमाने में जब बारिश होती थी तो एक उनको कहते थे मलंग, वो आते थे और उनका अटायर ये होती थी, लंबे बाल, हाथ में चिमटा, यहाँ रस्सियां, कमर में रस्सियां, और वो नाचते गाते थे बारिश में, जैसे वो बारिश का ऐलान करने आते थे। तो मुझे इतनी खूबसूरत ये बात लगी, और जो है नहीं अब ना,
2: जिस पर ये किताब का शीर्षक भी दिया गया है, उसने कुछ मुझसे कहा।
0: बिल्कुल, सीमा जी स्वागत है।
2: उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, एक परिंदा सा उड़ा हो जैसे,
0: क्या बात है,
2: नूर ही नूर फजा हो जैसे, फिर किसी लब पे दुआ हो जैसे, आज लगता नहीं पहले जैसा, आज लगता नहीं पहले जैसा, कोई पैबंद लगा हो जैसे,
0: क्या बात,
2: अक्स आईने में बदला बदला, अक्स आईने में बदला बदला, सामने गैर खड़ा हो जैसे, दूर जाते हुए कदमों के निशा, दूर जाते हुए कदमों के निशा, आके वो लौट गया हो जैसे,
0: क्या
2: रात ने चौंक के देखा किसको, रात ने चौंक के किस देखा किसको, एक शोला सा उठा हो जैसे, ओस के कांपते मोती थामे, ओस के कांपते मोती थामे, बर्फ ही दस्ते दुआ हो जैसे,
0: क्या बात है,
2: वही मानूस पुराना बरगद, वही मानूस पुराना बरगद, कोई कुछ सोच रहा हो जैसे,
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, आप यहाँ आए, आपने हमें, हमारे

0: ने वालों को कम से कम केके नैयर साहब से कुछ तारुफ तो कराया जो नहीं जानते थे उन्हें, और जो हम जो नाम से उन्हें जानते थे उनसे थोड़ा और मिलवाया। बहुत शुक्रिया आप
1: सबका, आपका बहुत शुक्रिया।
0: उसने कुछ मुझसे कहा, नैयर साहब की खुद की आवाज जिसने उनसे जीवन भर संवाद किया और अब वो संवाद इस किताब के पन्नों में उतर आया है सबके लिए हमेशा के लिए। साहित्य जीवित रहे, भाषाएं जीवित रहें और 90 वर्षों का आकाशवाणी का ये सफर यूं ही चलता रहे, इसी कामना के साथ साहित्य भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में हम सिंधु सुचेतन और एचएम स्मिता का वायलिन युगल वादन प्रस्तुत कर रहे हैं। एक विशिष्ट संगीत परंपरा में जन्मी ये बहनें सुप्रसिद्ध वायलिन वादक विद्वान एवी वेंकट नारायण की पौत्रियां हैं, जो संगीत कला निधि मैसूर टी चौदैया के शिष्य थे। इस समृद्ध विरासत ने इनके लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया, किंतु निरंतर साधना और उत्कृष्टता की अनवरत खोज ने इन्हें आज के सफल कलाकारों के रूप में प्रतिष्ठित किया है। गान कला भूषण एच के नरसिम्हा मूर्ति तथा विदुषी एच एन राजलक्ष्मी के मार्गदर्शन में और विदुषी पुष्पा श्रीनिवासन, श्री टी के श्रीनिवासन तथा विख्यात वायलिन वादक विद्वान एच एन भास्कर के सानिध्य में इन्होंने ऐसी शैली विकसित की है जिसमें गहनता और गतिशीलता का सुंदर समन्वय है। आपका संगीत एक अनुभूति है जहां भावपूर्ण अभिव्यक्ति और तकनीकी कौशल का अद्भुत संगम होता है। वायलिन पर आपकी सशक्त पकड़ आपकी प्रस्तुति को एक विशिष्ट आयाम देती है, जिससे आपका संगीत अत्यंत भावपूर्ण और आकर्षक बन जाता है। अपनी कला के माध्यम से ये बहनें ऐसा संगीत अनुभव सृजित करती हैं जो श्रोताओं के हृदय को स्पर्श कर जाता है। अपनी उत्कृष्टता के लिए सम्मानित सिंधु और स्मिता आकाशवाणी बेंगलुरु की ए ग्रेड कलाकार हैं और उन्होंने गायन तथा वायलिन दोनों ही विधाओं में लगातार सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हैं। आपकी कला को मद्रास म्यूजिक अकादमी, अनन्या युवा पुरस्कार, युवा पुरंदर पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित एमएस सुबुलक्ष्मी फेलोशिप सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सिंधु और स्मिता केवल कलाकार ही नहीं बल्कि एक समृद्ध परंपरा की संवाहक हैं, जो कर्नाटक संगीत की अमर धरोहर को गरिमा, नवोन्मेष और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एचएम स्मिता। Born into a distinguished musical lineage, the sisters are the granddaughters of the legendary violinist Vidwan A.V. Venkatanarayana, a direct disciple of Sangeeta Kalanidhi Mysore T. Chaudhaya. This rich inheritance laid a strong foundation, but it is their relentless pursuit of perfection that has shaped them into the accomplished artists they are today. Under the guidance of eminent gurus, like Gana Kalabhushana Vidwan H.K. Narasimha Murthy and Vidushi H.N. Rajalakshmi, along with mentorship from Vidushi Pushpa Srinivasan, Sri T.K. Srinivasan and Vidwan H.N. Bhaskar, Sindhu and Smita have honed a style that seamlessly blends depth with dynamism. Their music is a journey where soulful bhava meets technical finesse. Their command over the violin adds a rare dimension, making their performances both immersive and distinctive. The sisters create an experience that resonates deeply with audiences. Recognized for their excellence, Sindhu and Smita are A-grade artists of Akashvani Bengaluru and have consistently earned top honors in both vocal and violin disciplines. Their artistry has been celebrated with prestigious awards including accolades from the Madras Music Academy, the Ananya Yuva Puraskara, Yuva Purandara Award and the distinguished MS Subbalakshmi Fellowship. Sindhu and Smita are torchbearers of a legacy, carrying forward the timeless beauty of Carnatic music with grace,

0: इनोवेशन एंड अनवेवरिंग डेडिकेशन।
1: आज के इस प्रसारण में आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं बीएस प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव।
0: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट दे आर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बीएस प्रशांत, घटम बाय जी ओंकार राव।
1: सिंधु सुचेतन और एचएम स्मिता अपने वायलिन युगल वादन का आरंभ पचनम सुब्रमण्या अय्यर की रचना इरना पाई के साथ कर रही हैं। यह राग तोड़ी में आदि ताल पर निबद्ध है।
0: सिंधु सुचेतन एंड एचएम स्मिता बिगिन द वायलिन ड्यूएट रिसाइटल विद इरना पाई, अ कंपोजिशन ऑफ पचनम सुब्रमण्या अय्यर इन राग तोड़ी सेट टू आदि ताल।

0: अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वे अब संत त्यागराज की रचना गिरिराज सुता प्रस्तुत करेंगी, जो राग बंगाला तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग दे कॉन्सर्ट दे विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा गिरिराज सुता इन राग बंगाला सेट टू आदि ताल।

0: राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता द्वारा वायलिन युगल वादन सुन रहे हैं। आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं बी एस प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अब प्रस्तुत करेंगी संत त्यागराज की रचना ललिते, जो राग भैरवी तथा आदि ताल पर निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता। दे आर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बी एस प्रशांत, घटम बाय जी ओमकार राव। कंटिन्यूइंग द परफॉर्मेंस, सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट ललिते, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा

0: अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सुचेतन और एचएम स्मिता अब प्रस्तुत करेंगी संत त्यागराज की रचना ललिते, जो राग भैरवी तथा आदि ताल पर निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एचएम स्मिता। दे आर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बीएस प्रशांत, घटम बाय जी ओमकार राव। कंटिन्यूइंग द परफॉर्मेंस, Sindhu Suchetan and H.M. Smitha will now present Lalite, a composition of Saint Tyagaraja in Bhairavi Raga set to Adi Tal.

0: सिंधु सुचेतन और एचएम स्मिता प्रस्तुत करेंगी मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना मीनाक्षी। यह राग पूर्वी कल्याणी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड एचएम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदि ताल।

0: अभी आपने तानी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर बी एस प्रशांत और घटम पर जी ओंकार राव ने प्रस्तुत किया।
1: That was Taniya Vartanam presented on Mridangam by B.S. Prashant and on Ghatam by G. Omkar Rao.
0: Sindhu Suchetan aur H.M. Smita apne violin yugal vadan ka samapan raag Desh mein Tilana se karengi, jo vidwan Lalgudi Jayaraman ki rachna hai.
1: Sindhu Suchetan

0: के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में सिंधु सुचेतन और एचएम स्मिता का वायलिन युगल वादन संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर बीएस प्रशांत तथा घटम पर जी ओंकार राव।
1: विद दैट वी कंक्लूड वायलिन ड्यूएट रेसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एचएम स्मिता इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। दे वर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बीएस प्रशांत एंड ऑन घटम बाय जी ओंकार राव।
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु के स्टूडियो में रिकॉर्ड।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
3: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालसुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के

0: कुदृष्टिः कुवाक्यो प्रबद्ध सदाहम गतिस्तोम गतिस्तोम तुमेका भवानी। बहु समय रे गदगद होई से तार प्राणबंधु गोपबंधुक परि उल्लोलित होईछि सतशशी वळी शोभा केवि चित्र मनोलोभा किपरि यहार आशा छाड़ी मु नर गले पछे जाऊ जीव जहा हेब देखा जीव गिरीशिखे लय रखे चलि मुकर महार्घ महत महिष्ट ओ मोहनीय जीवन शक्तिर वंदना ओ वंदावना करिबाकु आप्राण प्रयास करि चालिथिबा ए मामूली सत्ता आविष्कार करुछि सेथिरे से विफल होइ जाउछि। सेथिपाई रवीन्द्रनाथक परि गभीर अशांति ओ असंतोषर से गाई उठिछि जतबार आलो जलाते चाय निवे जाए बारे बारे आमार जीवने तुमार आसन गभीर अंधकारे। ता सत्वे तापाई सर्वोत्तम ओडिया कवि गंगाधरंक तपस्विनीर से कालजयी पद्यांश भारी सांत्वनादायक होईछि। बने बने भ्रमि भ्रमि गंड कुहु केन भ्रमि बहु बाधा अतिक्रमी स्वच्छ जीवने अंधार दुख न गणी आलोक सुख न मणि चालीछि दूर सरणी नत बदने जन्म करुछि सफल तोयदाने तोषी तीरवासी सकल। ए पंक्ति ता बंचिवार उभय कला ओ विज्ञान जहा प्रति समर्पित होई संसार सह अव्यभिचारी वाणिज्य करिवाकु से चेष्टित। संसार रे प्रत्यक्ष भगवत शक्ति स्वरूप तार गुरुवृंदक सह सबुरी वंचिवार मूलरे थिबा चासी भाई श्रमिक भाई सैनिक भाई चिकित्सक ओ वैज्ञानिक भाई भौणी पद पंकजरे से बाढ़ी प्रणति अर्घ्य सेमानक प्रचार शून्य सदाचार ओ विचार ताकु ठीक सेपरी प्रभावित करिछि जेपरी करिछि गुरु गुरुमा मानंकर स्नेह भरा आशीष प्रेमसिक्त ज्ञानदान। से आंतरिक ओ अकपट भावे विश्वास करे एकर विनाशे अनेक प्रकाशे सृष्टिर ये नित्य विधि एकर जा क्षय अनेक उदय अनेक एकर सिद्धि। जने व्यक्ति रूपरे एहाकु से करिछि ता जीवनर सावित्री ओ गायत्री हेले ता सह संपूर्ण एकात्म होइ पारि नाही तेणु बेले बेले दोनाबुड़िया अनीति अवलम्बन करी ना से होई पारिछि संसारी ना सन्यासी ना स्वर्गयात्री ना मर्त्यमित्र। ए निरंतर दारुण अनुभव ताकु खूब घारे भारी बिंधे किपरि एक हिनिमानिया स्थिति रे मुहुर्मुहु विपर्यस्त तार जीवन यात्रा जहा तृषार्थ क्षुधार्थ भयार्थ कामार्थ पुणि शोकार्थ ओ आर्थ सतरे एथि सकाशे जदिओ से मुह्यमान तथापि अशक्त असिद्ध अशुद्ध असंस्कृत तारे करुणा स्थिति रे तार खाली प्रार्थना लीड काइंडली लाइट लीड दाओ मी ऑन सेंड दाई रेन्स टू माइ ड्राइड रूट्स। सुमाता विश्वमातांकर ए पुत्र ता निज दृष्टि रे निज को देखिला बेले तार ए असुर्य उपनिवेश रूप झलसी उठे तथापि जगतर प्रति कोण अनुकोण रे सत्य शिव सुंदर निरंतर महानाटक अभिनेत हेउथिला बेले से छोट हेले भी एक भूमिका रे अवतीर्ण होई तार अभिव्यक्ति को अमहत करिवारु रक्षा करिवा पई से नित्य विराजित परम कारुणिकंक ठारे प्रणत अवनत हुए।
1: कथिकरे आपण माने सुनथिले आलोचना निज दृष्टि रे निजे आलोचक डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्र। आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्रर कार्यक्रम प्रचारित होउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जुगे। आमर एही प्रसारण डीटीएच एवं लाइव स्ट्रीमिंग आप जुगे मध्ये आपण माने सुनि पारुछन्ति। रागमंजरीरे प्रचार करछु राग उपर आधारित केतोटि गीत आजर शिल्पी महाप्रसाद कर संगीत मनमथ मिश्र शिल्पी गायछन्ति प्रफुल्ल करंकर रचनारू।

0: समृद्धि आणंतु।
1: इफ्को नैनो सारर चमत्कारिता रे प्रत्येक चाष एवं चाषी समृद्ध हेबे।
2: राग मंजरी रे शिल्पी महाप्रसाद करो परवर्ती राग उपर आधारित गीत गाई चंदी प्रफुल्ल करंकर रचनारू।

0: ରାଗ ମଞ୍ଜରୀରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ କେତୋଟି ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ମହାପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ସଙ୍ଗୀତ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର। ରାଗ ମଞ୍ଜରୀ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି 308.6 ମିଟର ତଥା 982 କିଲୋହର୍ଟ୍ଜ ଯୋଗେ। ଆମର ଏହି ପ୍ରସାରଣ ଡିଟିଏଚ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି।
1: यहां खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहां होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।
3: सुनिबा को भूलिबेनी प्रत्येक गुरुवार सकाळ 8:30 रे प्रायोजित कार्यक्रम साधनार पृष्ठारे केवल आकाशवाणी कटक केन्द्र रे।

0: द्वंद्व द्वंद्व भय भीत नुहे कौरव कदापि रण क्षेत्रे बलि दे पांचटी छागल अरजीव केउ कीर्ति जदुकुल वीर निंदित होइब विश्वे निंदिबे सकले
1: कलि चेष्टा रखिबाकु गोपर से गोपर कहाड़ी किंतु सब वृथा शुणा तेबे प्रकृत रहस्य द्रौपदीक सम्मान सकाशे प्रतिज्ञारे बद्ध अछि से पंच पांडवे राज्य दाबी वृथा प्रहसन युद्ध पाई प्रस्तुत से माने
2: युद्ध पाई प्रस्तुत से माने एकी प्रहेलिका
1: लोहे प्रहेलिका प्रहेलिका मध्य अछि निराठ वास्तव बंधु मोहि बंधु पाई कांधे मो अंतर मो चक्षु सम्मुखे हेब कुरुक्षेत्र युद्ध कृष्णर कोमल प्राण सहिब किपरि तेणु आसीथिले करिबी मीमांसा मात्र पांच खंडी ग्राम दे पांडव मानंकु भोग कर बाबु तुहि ससा करा थरा भाई भाई मध्ये नलकु विवाद
2: भाई।

0: ओहो नारायण क्यों कार्ये बीजे दे बस कुनी शिविर
1: सब कार्ये समस्त कांति उठे विश्व हिते कृष्णर अंतर कौरव संगे रही आलस्य विलासे हुलिकल वीर तुम महान कर्तव्य शुण चाही देख अंतरिक्षे गांधार सेनर आत्मा कर चित्कार शुणिकि पारुछ वीर से कातर मर्मंतुत करुण विलाप
0: शयने स्वप्ने शुभे शुणे जागरणे गगन पवन थरे से करुण स्वरे पक्षी कंठ झरणार करुण मूर्छना एक ध्वनि एक स्वर शुणे सबुठारे किंतु किंतु निरुपाय निरुपाय मुही
1: निरुपाय तुम्हें विस्फोरण होइला कि पूर्वर शपथ कुरुवंश ध्वंस यज्ञे साजीव पुरोधा करिराह तुमे ही कठोर प्रतिज्ञा अनेशत पुत्र तुले निज खाद्य देई सब आशा भरसार लक्ष्य केन्द्र स्थल करिथिला विचेसिना गांधार राजन पर पारे आत्मा तार हुए कलबल अपूर्व पितृभक्ति आउ अत्याश्चर्य तुमरि शपथ अश्रुतपूर्व घटना विश्व इतिहास
0: भूली नहीं पित्रा देश भूली नहीं कठोर शपथ तू किस न जानु जणाइबी अंतर्जामी प्रस्तुत क्षेत्र रे विजय करिछि बपन अंकुरित विजय आज बीज पत्र स कामना पादप मोर पत्र पुष्प फळे फळाइबु केउ दिन तते जणा प्रभु कर्तव्य मोहर भागे फळ तोर दान फळ परे आशा नहीं साधी
1: साधु साधु वीर गांधार तनय संपदान कर त्वरा पितार आदेश पितृ ऋण शेष हेब तही संगे विश्वर मंगल संस्थापन हेब शांति तुमरी साहाज्ये।

0: 락다 락다 저절 디게 락다라 브라보노 락다스로 대바시다에 락다 거져왔소 거르고 지문로 말어 나를 배워프라에 세노 소가르르르비 푸르르르르르 라자 프로자 더리거릴터너 보지천 대지러니뿌라 가르아링거네 바시야세 바시야세 꼬르노 모쳐나 라니 언토부루 더거나 뽑아놓뿌리 멀모두더 꼬르노비라비 얼얼려로 수스컵으로 켜둘려 나이 바세끼 사티히러 몬두히러 라자두 쥐워서러 비다머허 비스모 서러 서짜레 사이토 지런리뜨라 버리네레 구루드로나 자치오 보리스바 석하털러 멋트로포티 설려 구토비사라도 세스터 마뚜러서구리 어타럽에 서더러 두사서러 둘리 나한띠 거울에 절에 이카 둘쥬더러 미사한 손이 떠나디 그라라 허리 발이 힘이 깼네 못해 너디 서이 붙디 예? 예? 예, 기회터메 올마디니 서먹구리 불러 서먹으로 불안거네 멀멀뚜더 가도로 비라비 돌아우쳐 거거로 뽑으러 기회터메
1: 못들어라 눕하래 간데 दुखिनी जननी बासल अपत्तस्नेहु बड़ी नहीं दुख
0: पुत्र किए तब पुत्र का पाई सोका तुर जननी को भ्रमण रात्रे किए से भाग्य बाल जा पाई जननी नयन कोणु बाली धारा धरे
1: तो पाई बसा तो पाई सोका कुड़ मुही
0: मो पाई मोह पाई सोका कुल तुमे धराए लोटक बल्या घुरी फुलो उन्माजनी सब किए तुमे दया मई करुणार मूर्ति अपार करुणा धारी पूर्ण कल दुर्योधन प्राण श्रांत क्लांत दुर्योधन उत्तप्त हृदय ढालिल अमीय धारा बुंदाकिरी सब
1: लक्ष्मी मुही विष्णु पाठ राणी लक्ष्मी वंत तु मान गोविंद सत् पशु लक्षण युक्त होइचि तो ठारे तो पोतांके फुटी उठे लक्ष्य स्वर्ण पद्म तेणु मुही विष्णु को बरजी आश्रय करिथिली वत्स्य तोर स्कंद देसे
0: माता लोक माता रमा तुमे जगत पूजिता अपार करुणा अपार करुणा तोर जानिमु नथिली माता सारा विश्व गाए आदि दुर्योधन निंदा अपकीर्ति गाई बोले गगन पवने विश्वर महत्व जज्ञे गोटी गोटी कुरुकुल वीर पुरोधा पलटी दे मंत्र रे आहुति पूर्णाहुति हेब जज्ञे रजनी शेषे कुरुकुल ध्वंस यज्ञ हेब समापन
1: न शुणी बाचलता तोर शत्रु सरे विदीर्ण तु गुरु चूड़ामणि शरीर बन पलस पराय अतिशय रक्त श्रावी श्रांत क्लांत तुही लोड़ा तोते गुरुमणि संपूर्ण विश्राम
0: विश्राम विश्राम भजी माता सर से पिता महल भिले विश्राम मोड़ा से सखा कर्ण गुरु द्रोणाचार्य मत्रपति शल्य संगे मातुल सकुरी अठार भी सहोदर दुशासन तुले मोह पाई विश्रामिले अनंत विश्रामे तांक मेले एक तड़पे ने भी मो विश्राम
1: न शुणी भी बाचलता।

0: ଶୁଣିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30 ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧନାର ପୃଷ୍ଠାରେ କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
1: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: करेंगे। लगभग 36,230 करोड़ की कुल लागत से निर्मित गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा के समय को 10 से 12 घंटे से घटाकर करीब 6 घंटे कर देगा। शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का प्रावधान इसका मुख्य आकर्षण है, जो परियोजना के आर्थिक लाभों से परे रणनीतिक मूल्य जोड़ता है। इन सबका विवरण देने के लिए मैं हूं शहसियार खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार एंड वेलकम टू दिस स्पेशल ब्रॉडकास्ट। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल इनॉग्यूरेट द गंगा एक्सप्रेसवे इन हरदोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। The Ganga Expressway is a 594-kilometer long six-lane expandable to 8 lanes access-controlled greenfield high-speed corridor built at a total cost of around 36,230 crore. The expressway traverses through 12 districts of Uttar Pradesh, that is Meerut, Bulandshahr, Hapur, Amroha, Sambhal, Badayun, Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Rai Bareli, Pratapgarh and Prayagraj, thereby connecting the western, central and eastern regions of Uttar Pradesh through single seamless high-speed corridor. The key benefit of this Ganga Expressway is that it will significantly reduce travel time between Meerut and Prayagraj from the existing 10 to 12 hours to approximately 6 hours, enhancing ease of movement and efficiency in transportation.
0: माननीय प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद हरदोई उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जो कि देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, 6 लेन जिसको 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर है, जिसका निर्माण लगभग 36,230 करोड़ रुपए की कुल लागत से किया गया है। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है, जिससे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों को एक ही निर्बाध हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा गया है। इस परियोजना से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का मौजूदा समय, जो कि लगभग 10 से 12 घंटे लगता है, घटकर 6 घंटे रह जाने की उम्मीद है, जिससे आवागमन में सुगमता और परिवहन में दक्षता में सुधार होगा। इस परियोजना की एक विशेषता यह है कि इसमें शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग व्यवस्था, जो कि हवाई पट्टी है, इसका निर्माण किया गया है। ये दोहरे उपयोग वाली अवसंरचना राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों की मजबूती को बल देती है और आर्थिक लाभ के अलावा रणनीतिक महत्व पर भी इसमें जोर दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे एक प्रमुख आर्थिक गलियारे के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसके मार्ग में पड़ने वाले 12 जिलों में लगभग 2635 हेक्टेयर वर्ग में एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक लागत को कम करेगा, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार करेगा और विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। बेहतर संपर्क व्यवस्था से किसानों को शहरी और निर्यात बाजारों पर अधिक और सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और ग्रामीण आय में वृद्धि भी होगी। इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, नए आर्थिक अवसर खुलने और पूरे क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होने की पूरी उम्मीद है। गंगा एक्सप्रेसवे राज्य में एक व्यापक एक्सप्रेसवे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी के रूप में भी काम करेगा, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जेवर लिंग एक्सप्रेसवे, फरुखाबाद लिंग एक्सप्रेसवे और मेरठ से हरिद्वार तक प्रस्तावित विस्तार सहित कई लिंक कॉरिडोर या तो चालू हैं या योजनाबद्ध है। यह उभरता हुआ एक्सप्रेसवे नेटवर्क उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक उच्च गति वाली

0: सड़क कनेक्टिविटी का विस्तार करेगा जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास संभव है। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक परिवहन परियोजना ही नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी पहल है जो लॉजिस्टिक लागत को कम करेगी, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करेगी, कृषि और ग्रामीण आय को बढ़ावा देगी, रोजगार सृजित करेगी और पूरे राज्य में समग्र आर्थिक विकास को गति देगी। इसका उद्घाटन थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री हरदोई उत्तर प्रदेश में करेंगे।
1: And as we mentioned earlier, the Ganga Expressway project, the key highlight of it is the provision of a 3.5-kilometer long emergency landing facility, that is an airstrip in the Shahjahanpur district. This dual-use infrastructure enhances national security preparedness and adds a strategic value beyond economic benefits. The Ganga Expressway is envisioned as a major economic corridor with the development of integrated manufacturing and logistics corridors over approximately 2,635 hectares across 12 districts along its alignment. The expressway will reduce logistic costs, improve supply chain efficiency, and boost manufacturing competitiveness. Improved connectivity will provide farmers with direct access to urban and export markets, facilitating better price realization and strengthening rural incomes. The project is also expected to boost tourism, unlock new economic opportunities, and generate direct and indirect employment opportunities across the region. The Ganga Expressway will also serve as a backbone for a broader expressway network in the state, with several link corridors either operational or planned, including the Agra-Lucknow Expressway, the Jewar Link Expressway, Farukhabad Link Expressway, and the proposed extension from Meerut to Haridwar. This emerging expressway grid will expand high-speed road connectivity across Uttar Pradesh from east to west and from north to south, enabling balanced regional development. The Ganga Expressway is not merely a transportation project but a transformative initiative that will reduce logistic costs, attract industrial investment, boost agriculture and rural incomes, generate employment and drive holistic economic growth across the state. In fact, the Prime Minister arrived in Uttar Pradesh yesterday from Sikkim and he participated in the Mahila Sammelan at Varanasi, his own parliamentary constituency, yesterday. And he laid the foundation stone of various development projects worth around 6,350 crore rupees in Varanasi. And this morning, the Honorable Prime Minister had darshan and performed puja at the Sri Kashi Vishwanath Temple in Varanasi. The Honorable Prime Minister is expected in Hardoi in just a short while for the inauguration of the Ganga Expressway.
0: Bilkul, Maniya Pradhanmantri, ab se kuch der baad Hardoi mein jo Ganga Expressway hai, iska udghatan karenge. Isse pehle aaj subah Maniya Pradhanmantri ne श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में पूजा अर्चना की और जैसा कि कौशिक ने बताया प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर भी हैं। कल प्रधानमंत्री बनारस पहुंचे थे जो कि वाराणसी है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने महिला सम्मेलन में भाग लिया और करीब 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें ये परियोजनाएं रेल, सड़क, जल, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और शहरी अवसंरचना पर सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई है। प्रधानमंत्री ने दो नई अमृत भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी भी दिखाई जो कि बनारस पुणे और अयोध्या मुंबई की है और प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं के बाद लोगों को संबोधित भी किया। माननीय प्रधानमंत्री ने जो महिला सम्मेलन है इसमें भाग लेकर करीब 1,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 48 पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विभिन्न सामुदायिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत 30 ग्रामीण पेयजल योजनाएं, चंद्रावती घाट का पुनर्विकास, सारनाथ के पास जो सारंगनाथ मंदिर का पर्यटन विकास और नागवा स्थित संत रविदास पार्क का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्वार कार्य भी शामिल है।

सार्वजनिक सेवाओं और खेलों में सुधार भी प्रमुखता से किए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश कॉलेज में सिंथेटिक हॉकी टर्फ, रामनगर में 100 बिस्तरों वाला वृद्धाश्रम और भेलूपुर जल शोधन संयंत्र में 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने तिब्बती अध्ययन केंद्रीय विश्वविद्यालय में सोवा रिगपा भवन और अस्पताल का उद्घाटन भी किया, जो कि आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए काफी प्रचलित है। माननीय प्रधानमंत्री 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे में आज अब से कुछ देर बाद हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। जैसे ही उद्घाटन स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, आपको हम कार्यक्रम में सीधे लिए चलेंगे।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके, आइए आपको सीधे कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी का
2: Prime Minister has arrived at the venue where he will inaugurate the 594 kilometer long access controlled greenfield Ganga Expressway in Hardoi, and the Honorable Prime Minister is greeting all the people who are present on the dais, including the Uttar Pradesh Governor Mrs. Anandibeen Patel and the Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath Ji, and other distinguished guests are present on the dais inauguration of the Ganga Expressway.
1: देश भर में विकास रूपी गंगा की अविरल धारा अपने पूरे वेग से प्रवाहित है। ऐसे युग पुरुष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आपके उल्लास और ऊर्जा के साथ करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन है। आज के इस आयोजन में भक्त प्रहलाद की आस्था स्थली है ये, जो भगवान विष्णु के वामन और नरसिंह अवतार की भी पावन धरा है। ऐसे हरिद्वय यानी दो अवतारों वाली पुनीत भूमि पर वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी स्वागत अभिनंदन है। साथ ही स्वागत आप सबके करतल ध्वनि के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। देवियों सज्जनों, इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी की। उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और श्री ब्रजेश पाठक जी की भी उपस्थिति है। साथ ही यहां विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में यहां उपस्थित जन समुदाय का आप सबका स्वागत अभिनंदन और वंदन है। देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, वे प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करके आप सबके करतल ध्वनि के साथ जीवनदायिनी मोक्षदायिनी मां गंगा का स्वरूप और साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे की भव्यता को इस स्मृति चिन्ह में प्रदर्शित किया गया है। अभिनंदन वंदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश को भय मुक्त कर नवनिर्माण और विकास की गंगा प्रवाहित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुरोध है, वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2: And the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, will now
3: address the
2: gathering.
3: Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, Bande, Bande, Bande, Gange Maiya Ki, Gange Maiya Ki. नमः पार्वती पतिये हर हर

एक गंगा एक्सप्रेसवे, का उद्घाटन का एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। देवी सुरसरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे, मां गंगा के पैरलल समानांतर उस विराट को छूने के लिए उत्तर प्रदेश के आर्थिक विस्तार को एक नई उड़ान देने के लिए जिस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास आपने दिसंबर 2021 में किया था, आज आपके कर कमलों से उसका ये भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है, आपके विजन को इस जमीनी धरातल पर उतारकर आज उद्घाटन के इस भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपका भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान के अवतरण की इस पावन धरा पे हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरदोई श्री हरि विष्णु के परम भक्त भक्त प्रहलाद के उद्धार की भूमि, बावन अवतार और नरसिंह अवतार की पावन धरा हरदोई में आज यह अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जितेन प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, नितिन अग्रवाल जी, असीम अरुण जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हरदोई, सांझापुर, उन्नाव, कन्नौज और फरुखाबाद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आज गंगा एक्सप्रेसवे के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मां गंगा के आशीर्वाद से अब सिंचित इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से, आपकी विराट सोच के अनुरूप देश के एक बड़े एक्सप्रेसवे में से

भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और ये तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। बहन और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4,00,000 किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन और 2 लेन की सड़कों के साथ जोड़ करके 7 सिटी में मेट्रो और देश की पहली रैपिड रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों दिल्ली मेरठ के बीच में इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करके उन दूरियों को समेटने के साथ ही उत्तर प्रदेश की इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, आज वह जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार की ताकत के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यह एक्सप्रेसवे हमारी दूरी को ही कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन सभी पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी के लिए स्वीकृत किया था वह भी है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं, किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेसवे बने हैं, युवाओं के रोजगार के एक्सप्रेसवे बने हैं, आस्था और संस्कृति के एक्सप्रेसवे हैं और प्रदेश की समृद्धि के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे 27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड लॉजिस्टिक हब डेवलप करने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। अगर हम केवल गंगा एक्सप्रेसवे पर देखेंगे, 594 किलोमीटर का यह लंबा एक्सप्रेसवे, जिस पे केवल एक्सप्रेसवे पर ही हम लोगों ने 18,000 एकड़ लैंड अन्नदाता किसानों से लिया है और इस पर बनने वाले जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हम हैं, इनमें भी लगभग 7,000 एकड़ लैंड अलग अलग स्थानों पर लेकर के नए निवेश और उसके माध्यम से नौजवानों के लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज जिन 12 जनपदों में मेरठ से लेकर प्रयागराज तक विस्तृत इस एक्सप्रेसवे पर 12 जनपदों के जिन 1,00,000 से अधिक किसानों ने लैंड उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया है, मैं उन सभी अन्नदाता किसानों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने जो भी लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी है उसके अंतर्गत इस पूरे अभियान को, विकास हो, उत्तर प्रदेश के अनलिमिटेड पोटेंशियल को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप

0: विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम भी योगदान दे सकें, उस विजन में उन्होंने भी अपना भरपूर योगदान दिया। आज उसी का परिणाम है कि एक्सप्रेस वे बन करके तैयार हुआ है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसका शिलान्यास किया गया था, ये बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार कहा है कि जिसका शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन भी करेंगे, आज उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
1: उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत उद्बोधन दे रहे थे और परियोजना के बारे में जानकारी दे रहे थे।
2: वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने की कृपा करें, हम सब साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण का।
3: Built at a cost of around 36,230 crore rupees, the Ganga Expressway will significantly reduce travel time between Meerut and Prayagraj.
4: सर रास्ते सिर्फ दूरी नहीं, सपनों को भी करीब लाते हैं। सुपर फास्ट सड़कें केवल यात्रा को आसान नहीं बनाती, बल्कि गांवों और शहरों को जोड़कर रोजगार, व्यापार और औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा भी देती हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप रिकॉर्ड समय में बनाया गया है नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्याय, नए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे।
5: 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा।
4: माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से कभी जो सफर घंटों में तय होता था, अब वो मिनटों में हो रहा है पूरा। डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को बनाया है एक्सप्रेसवे स्टेट। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। अब देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक हिस्सेदारी हो गई है। मेरठ के ग्राम बिजौली से प्रारंभ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होकर प्रयागराज के ग्राम जूडापुर दांदू में समाप्त होने वाले गंगा एक्सप्रेसवे से आच्छादित हैं 12 जनपद और 518 ग्राम।
0: मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे न केवल एक्सप्रेसवे यातायात की दृष्टि होगा, बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, रोजगार के सृजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का एक बड़ा अभियान होगा।
4: 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डिजाइन किए गए गंगा एक्सप्रेसवे पर 14 दीर्घ सेतु, 165 लघु सेतु, 7 आरओबी, 32 फ्लाईओवर, 453 अंडरपास, 795 बॉक्स कलवर्ट के साथ ही महत्वपूर्ण मार्गों से 21 स्थानों पर इंटरचेंज, यात्रियों की सुविधा के लिए 9 स्थानों पर जन सुविधा परिसर का कराया गया है निर्माण। स्थानीय जनमानस के सुविधाजनक आवागमन के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर कराया गया है 737 किलोमीटर सर्विस रोड का निर्माण। सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए हरेक किलोमीटर पर लगाए गए हैं सोलर ऊर्जा से संचालित हाईटेक स्मार्ट कैमरे। आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन की लैंडिंग व टेकऑफ के लिए बनाई गई है एयर स्ट्रिप। देश में एक्सप्रेसवे पर सबसे

0: एयर स्ट्रिप के मामले में भी उत्तर प्रदेश बन गया है नंबर वन। औद्योगिक गलियारा परियोजना के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे के सन्निकट 12 जनपदों में स्थापित किए जा रहे हैं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स। सामाजिक समृद्धि, सामरिक सुरक्षा और औद्योगिक उन्नति का पर्याय गंगा एक्सप्रेसवे समग्र विकास की वो नई सुबह है जिसके हर मोड़ पर तरक्की कर रही है आपका इंतजार। काम दमदार डबल इंजन सरकार।
1: माननीय प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट
2: हार्दिक बधाई आप सभी को।
1: 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया।
2: आइए आप सबके सम्मान और कृतज्ञता से भरी करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके संबोधन के लिए।
3: प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द गैदरिंग एट हरदोई।
2: माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
4: भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश जी पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जितिन प्रसाद जी, पंकज चौधरी जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं भगवान नरसिंह की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। साथियों, जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। 24 अप्रैल को मैं जब बंगाल में था तो मां गंगा के दर्शन किए थे और फिर कल तो मैं काशी में था, आज सुबह ही फिर बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और मां

गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और अब मां गंगा के नाम पर बने इस एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। मैं यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेसवे की बधाई देता हूं। साथियों, आज लोकतंत्र के उत्सव का भी एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है, बड़ी संख्या में वोटिंग कर रही है। अभी वोटिंग खत्म होने में कई घंटे बाकी है। मैं बंगाल की जनता से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व में ऐसे ही उत्साह से भाग लें। साथियों, कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए तो बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, एक इतिहास रच दिया था। अभी अभी कल ही गुजरात में महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, तहसील पंचायत, इन सब के चुनाव के नतीजे आए हैं और आप मेरे उत्तर प्रदेश वासियों को खुशी होगी, 80 से 85% नगर पालिका और पंचायतों भाजपा ने जीत ली है। मुझे विश्वास है इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा
ऐतिहासिक जीत की

की हैट्रिक लगाने जा रही है। चार मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे, देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। साथियों, देश के तेज विकास के लिए हमें तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण करना है। दिसंबर 2021 में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने मैं शाहजहांपुर आया था। अभी पांच साल से भी कम समय हुआ है और आप देखिए, देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में शुमार यूपी का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे ये पांच साल के भीतर भीतर बनकर तैयार हो गया है। आज हरदोई से इसका लोकार्पण भी हो रहा है। यही नहीं, एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके और बेहतर उपयोग के लिए फरुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। ये है डबल इंजन सरकार का विजन, ये है भाजपा सरकार के काम करने की स्पीड, ये है भाजपा सरकार के काम का तरीका। भाइयों बहनों, कुछ ही दिन पहले मुझे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला था। तब मैंने कहा था कि नए बनते एक्सप्रेसवे विकसित होते भारत की हस्तरेखाएं हैं और ये आधुनिक हस्तरेखाएं आज भारत के उज्जवल भविष्य का जयघोष कर रही है। साथियों, अब वो दौर चला गया जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। एक बार घोषणा हो गई तो वर्षों तक फाइलें चलती थी, चुनाव के लिए पत्थर लग जाता था, उसके बाद सरकारें आती रहती थी जाती रहती थी लेकिन काम का कुछ अता पता नहीं लगता था। कभी कभी तो पुराने फाइलें ढूंढने के लिए बड़े बड़े अफसरों को दो दो साल तक मेहनत करनी पड़ती थी। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी हो करके रहता है। इसलिए ही आज यूपी के एक्सप्रेसवे से भी ज्यादा रफ्तार अगर कहीं है तो वो यूपी के विकास की रफ्तार ही है। साथियों, वो एक्सप्रेसवे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं है, ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 600 किलोमीटर लंबा है,
पश्चिम

यूपी में मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल और बदायूं, मध्य यूपी में शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इनके आसपास के दूसरे जिले गंगा एक्सप्रेसवे, इससे इन इलाकों के करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। साथियों, इन क्षेत्रों को गंगा जी और उनकी सहायक नदियों की उपजाऊ मिट्टी का वरदान मिला है, लेकिन पहले की सरकारों ने जिस तरह किसानों की उपेक्षा की, उसके कारण किसान परेशानियों के में ही घिर करके रह गए। यहां के किसानों की फसलें बड़े बाजारों तक नहीं पहुंच पाती थी, कोल्ड स्टोरेज की कमी थी, लॉजिस्टिक का अभाव था, किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था। अब उन कठिनाइयों का समाधान भी तेजी से होगा। गंगा एक्सप्रेस वे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। यहां खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, गंगा एक्सप्रेस वे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर के असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत सभी 12 जनपदों में नए उद्योग आएंगे। अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, हमारे ये युवा मुद्रा योजना और ओडीओपी जैसी योजनाओं को उसकी ताकत से खुद भी नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। यहां छोटे उद्योग एमएसएमईज को बढ़ावा मिल रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा से उनके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, संभल का हैंडीक्राफ्ट, बुलंदशहर के सिरेमिक, हरदोई का हैंडलूम, उन्नाव का लेदर, प्रतापगढ़ के आंवला प्रोडक्ट्स, ये सब बड़े स्केल में देश दुनिया के मार्केट में पहुंचेंगे। लाखों परिवारों के इससे आमदनी बढ़ेगी। आप मुझे बताइए, क्या पुरानी सरकार में हरदोई, उन्नाव जैसे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की कल्पना तक हो सकती थी क्या? हमारे हरदोई से भी एक्सप्रेसवे गुजरेगा, ये कोई सोच सकता था क्या कभी? ये काम केवल भाजपा सरकार में ही संभव है। साथियों, पहले यूपी को पिछड़ा और बीमारू प्रदेश कहा जाता था, वही उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसके पीछे उतनी ही बड़ी तैयारी भी है, क्योंकि यूपी के पास इतनी असीम क्षमता है। देश की इतनी बड़ी युवा आबादी का पोटेंशियल यूपी के पास है। इस ताकत का इस्तेमाल हम यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कर रहे हैं। यूपी में नए उद्योग और कारखाने लगेंगे। यहां जब बड़ी मात्रा में निवेश आएगा, तभी यहां आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुलेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भाइयों बहनों, इसी विजन को केंद्र में रखकर बीते वर्षों में लगातार काम हुआ है। आप सब खुद भी महसूस कर रहे हैं, जिस यूपी की पहचान पहले पलायन से होती थी, आज उसे इन्वेस्टर समिट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जाना जा रहा है। यूपी की इन्वेस्टर समिट में

0: देश और दुनिया से कंपनियां आती है, यूपी में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। आज अगर भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान यूपी का है। आज भारत जितने मोबाइल बना रहा है उसमें आधे मोबाइल हमारे यूपी में बन रहे हैं। अभी कुछ ही हफ्ते पहले मैंने नोएडा में सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास भी किया है। साथियों, आप सब जानते हैं एआई के इस दौर में सेमीकंडक्टर कितनी बड़ी फील्ड बनाती जा रही है। यूपी उसमें भी लीड लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। भविष्य में असीम अवसरों वाला बहुत बड़ा क्षेत्र यूपी के लोगों के लिए खुल रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास आज भारत की सामरिक ताकत भी बन रहा है। आज देश के दो डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी में है। बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां यहां अपनी फैक्ट्री लगा रही है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें जिनका लोहा दुनिया मानती है आज वो यूपी में बन रही है। रक्षा उपकरणों के निर्माण में जो छोटे छोटे पार्ट चाहिए होते हैं उनकी सप्लाई के लिए एमएसएमई को काम मिलता है। इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को हो रहा है। छोटे छोटे जिलों में भी अब युवा बड़े बड़े उद्योगों से जुड़ने का सपना देख सकते हैं। साथियों, आज उत्तर प्रदेश इतनी तेज गति से विकास कर रहा है क्योंकि यूपी ने पुरानी सियासत को भी बदला है और नई पहचान भी बनाई है। आप याद करिए, एक समय यूपी की पहचान गड्ढों से होती थी। आज वही यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वेज वाला प्रदेश बन चुका है। पहले यहां पड़ोस के जिले तक जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है। गंगा एक्सप्रेस वे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही घंटों की दूरी पर है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है, लेकिन पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण अपराध और जंगल राज को यूपी की पहचान बना दिया था। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी, लेकिन अब यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। भाइयों बहनों, संसाधनों का बंदरबांट करने वाले जिन सिपाहियों के हाथ से सत्ता गई है उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। वो एक बार फिर समाज को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिलता। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें सांसद विधायक बनकर दिल्ली लखनऊ पहुंचती, वो भी किसी और वर्ग की सीटें कम हुए बिना। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। साथियों, इस बिल से सभी राज्यों की सीटें भी बढ़ती हैं। हमने संसद में साफ साफ कहा था सभी राज्यों की सीटें एक ही अनुपात में बढ़ेगी, लेकिन यूपी को गाली देकर पॉलिटिक्स करने वाली डीएमके जैसी पार्टियां, उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि यूपी की सीटें क्यों बढ़ेगी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी संसद में उन्हीं के सुर में सुर मिला रही थी। ये सपा वाले यहां से आपके वोट लेकर संसद जाते हैं और संसद में यूपी के लोगों को गाली देने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए यूपी के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी कभी सुधर नहीं सकती है, ये लोग हमेशा महिला विरोधी राजनीति ही करेंगे।
1: दलों को ठारू बंडा एवं क्वैंग को जाए।